ये जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों

0: से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा।
1: ஒலியில் இப்பொழுது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஹிந்தி பாடல்கள்.
2: You're listening to Hindi numbers on
0: 96. Oh my god.

0: मेरी मोहब्बत सच्ची है या झूठी, अरे सच्ची है या झूठी झूठी।
1: और किसी को दिखलाना ये सूरत टूटी फूटी, तुम जैसों से करती मिस्टर प्यार हमारी झूठी झूठी। और किसी को दिखलाना ये सूरत टूटी फूटी, तुम जैसों से करती मिस्टर प्यार हमारी।